कोय। जे बड़ियाप ते बड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, कसम विसारें ते कमजात, नानक नामे बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करौं गुर पास, हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश।

शरण परे की रखो शर्मा, कभियो बाच बेंती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तव चरणन मन रे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम कावो, आप हान दे मोए बचाव, सुखी बसाय मोरो परवारा, सेवक सिख सभय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को वास सिंगरे, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाओ, सेवक सेखे हमारे तारिया, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया, आप हां दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करो रक्षा, राख लियो मैं राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भिषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो,

शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रीट सवतार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद हरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद्य नीले अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत बेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपा हन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। वापे अपने बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई पूपा। अंडज जेरज से तज कीने, उत भुज खान बहुर रच दीने। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं समट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेठ दिखाए चंपव, आज जुगात स्वरूप से अंपव। आप रक्षा मेरी तुम करो, सिख बारे सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुतपाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज ताव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ठ ट्रैं तत्काला।

एक बार चिंत मैं संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा।

सवैया। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहुभेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोय बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाजवास, गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा नंद, एक ओंकार। सत गुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए। सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइया, रा गुरतन परवार परियां। शब्द गावने आईया, शब्दोता गावो हरि केरा। मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ। सत गुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सुधारो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार्यो करे तेरा, कार्य सब सवारना। सबना गल्ला सम्राट स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किश है। जिस दे सो पावे, सदा सिफत सला तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया,

धारु वाजे पांच शब्द तित कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक ता सुख होवा तित कर अन हद वाजे आनंद सनोवट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्तु तजी न जाए नित नित राख्यो रतारो ताम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक माला पंजवा तेरा कीता जतो नहीं मैनू जो की तोए मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

कृपा में। कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा, सकल समग्री तुमरा सूतर तुम ते हो सो। तुमरी गत मित जाने नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां, सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दित्ते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी के सां सुआसां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह ब्रिद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां, झंडे बंगे जिको जोगे अटल, धर्म का जयकार। खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मादा राखा आप, वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ देश दा सहाई दा तर जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभालदा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण, नितानिया दे ताण, निवटिया दी ओट। सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है। गरीब नवाज पातशाह जी आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखदिया, सोदर रहरास साहब जी की पावन बाणी दे जाप किए गए समुची सेवा निभाउंदियां होईयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा, अगां तों समत बख्शिश करनी, समूह संगत की अरदास बेनती प्रवान करनी, कदम कदम लेखे विच लाउणा। आप जी दियां बख्शियां दातां दे विचों, तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां, दरों करों गुरसिखी जीवन नाम की दात दे के नवाजना। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के, सत संतोख दया धर्म धीरज दियां दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना, इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी, कृपा करो पावन हुकम दी दात बख्श के समूह संगत नूं निहाल करो, अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करने, सरबादे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता वे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुर, जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा।
ख्वार हुए सब मिलेंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जहां जहां पेखो ता हजूर दूर कतो ना जाई। राव रहे आसर बतर मैं मन सदा त्याई। जहां जहां पेखो ता हजूर दूर कतो ना जाई। राव रहे आसर बतर मैं मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछुड़े सो संगी गनिया। बिनस जाए जो निमख मह सो अलप सुख पनिया। रहाओ प्रत पाले अपियाओ दे कश ऊन ना होई। सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अषाढ़ अषेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप। जप जप करें आनंद जान आचर्य अनूप। सा मत देहु दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा। नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा। सा मत देहु दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा। नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जन वडभागे हां जिथे आप जी ने संध्या समय नूं मुख रखदे हां। सोदा रहिरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का। सेवा निभा सत्कार योग भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाने वाले आओ तिना के जत्थे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुला चुका दिखेमा आप संगतान का धन्यवाद। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।

तुमरे गुणों क्या कहा मेरे सतगुरा, जब कुर बोलें तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंद पो मेरा सखा सखाए।

श्लोक शेख फरीद के एक ओंकार सात गौर प्रसाद जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए मलक जे कन्नी सुनीदा मोहन देखाले आए जिंद निमाणी कढ़िए हड्डा को कड़काए साहे लिखे ना चलनी जिंदु को समझाए।

आपन हाथी जोड़ कै गड़ लगे ताए, वालों निकी पुरसलात, कन्नी ना सुनी आए।

फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, चला दुनिया पात, बन उठाई पोटली, किथे वन्या कत, किज ना बुझे किज ना सुझे, दुनिया गुजी पाहे।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर सिंघासन दे मालक वालिया कुल आलम सरवरे कायनात दीन दुनी दे मालक धन धन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तिना दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे अते मीडिये दे राही घरां विच बैठ के साहिब जी दी पावन अमृतमई मुबारक बाणी नाल सांझ बना रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वडभागियां जिथे आप जिया ने गुरु दर दे सत्कारत कीर्तनी जथे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने रोजाना दे बने हुए नियम अनुसार आओ कुछ घड़ियां सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार नाल एक सुर होण दा यतन करिए गुरमत विचारां दी सांझ करन तो पहला कलगीधर स्वामी बादशाह दरवेश अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी वल्लों बख्शिश कीती हुई पावन मुबारक गुरु फतेह नाल सांझ बनाइए आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रोजाना ही इन्हों दीवाना दे विचों आप जी जो लड़ीवार भगत बाणी की कथा विचार चल रही है ते इस नूं सरवण करदे आ रहे हो ते इस लड़ी दे तहत कबीर साहब जी दे शब्दां दी ते सलोकां दी विचार दा समापन कल दे दीवाना विच कीता गया सी जिस जगह दे उत्ते कबीर साहब जी दे सलोक समाप्त हुंदे ने ठीक उसे थां तों उसे अंक तो बाबा शेख फरीद साहब जी के सलोकों का आगाज आरंभ हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी दे विच 15 भगत साहबाना की बाणी है। जदों भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच 15 भगत साहबाना की बाणी का आरंभ होएगा आगाज होएगा तो उत्थे सांझा सिरलेख आएगा बाणी भगतां की, पर यह सटीक शब्द जिहड़ा है 14 भगत साहबाना के नाम नाल ते वरत्या गया, पर जदों ही बाबा फरीद साहब जी की बाणी आएगी उत्थे शब्द भगत नहीं आएगा, उत्थे उन्हां लई एक पर्टिकुलर शब्द वरत्या गया शेख फरीद जी। जदों असीं बाबा शेख फरीद साहब जी की अपनी बाणी पढ़ते हाँ तो उन्होंने अपने शब्दों के विच भी अपने लिए भी यही शब्द वरत्या आख्या आखी शेखा बंदगी चलन अज के कल। शेख शब्द का मतलब होंदा है दाना गहर गंभीर पढ़िया लिखिया आलम फाजल ते सियाना विशेष व्यक्ति। गुरु नानक महाराज थां पुर थां तो जदों भगतां दी बाणी एकत्र करके लियाए उन्हां भगत साहबाना नूं उन्हां दे कल्चर दे विच लोक जिहड़े शब्द नाल संबोधन हुंदे सन चेते करदे सन महाराज ने उस शब्द नूं बदलिया नहीं। आका जिथे सानूं इन्हां दी बाणी लिखित प्रवान है जिहड़े जिहड़े तखलस नाल लोक इन्हां नूं चेते करदे ने सानूं तखलस ही प्रवान है। एग्जैक्टली इदां ही बाबा फरीद साहब दे नाल वापरिया। महाराज जदों गुरु नानक साहब 15वीं सदी विच उत्थे गए बाबा शेख फरीद साहब 11वीं सदी विच होए 400 साल का फर्क है जी। ते बाबा फरीद साहब जी दे गद्दीदार दे कोलों क्योंकि जिहड़ा फरीद दी गद्दी ते बहेगा फरीद ही होएगा। असीं गुरु नानक साहब दी बाणी पढ़दे हां गुरु नानक साहब महाराज दी गुरता गद्दी दे उत्ते बैठ के जिस भी महान पुरख ने बाणी उच्चारण कीती उन्होंने अखीर ते मोर छाप जिहड़ी आ उह नानक ही वरती। तुसीं दूजे पातशाह दी बाणी पढ़ो, तीजे पातशाह दी पढ़ो, चौथे की पढ़ो, पंजवें की पढ़ो, नामे की पढ़ो, सारिया ने मोर छाप जिहड़ी वह नानक ही वरती। कोई सधारण व्यक्ति गुरु तेग बहादुर महाराज कोलों बाणी लेके आवे तो आखे जी मैं गुरु नानक नूं मिलिया,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 1675 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ

और सातनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सभं गुरु प्रसाद तुम दाते ठाकर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम्हें प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे जेवा एक कमन गुण कहिया बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लिए रहाओ कोड़ बराद हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम ज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरे शरण तुम्हारी आसा तुम ही शरण सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले दर्शन दे जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए ब्रह्म मेरा ए बनंती सुन प्र मेरे दे नाम करे अपने चेहरे अपनी शरण दा प्रावदाते गुर प्रसाद कन बिरले जाते सुनो बिनो प्रा मेरे मीता चरण कबल वसे मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सो कहो टल गुरु सेविया सुबाए दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो शिव तक संबंधी नूर अरसो कुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह हुंदे शाह जिस पास बैठे सोही है सबना दा विसा सतनाम वाहिगुरु साहिब जी राम कली महला चौथा सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुरचरणी जिनवार प्रभ मार्ग पंथ दिखाया सतगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुरचरणी जिन हर प्रभ मार

मैं हर बिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ। मेरे एक खेना प्राण ना रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वडभाग गुर श्रणी आए, हर गुर में

सब तेरी कुदरत कादर करता पाकी नहीं पा नानक हुक्म अंदर वेख्या वरत तक को तक पौड़ी अपने।

तिन घर ब्रह्मनपुर नदू न पे अवे अविशाद कुड़ी रस कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नान कुड़ रहा भरपूर मथा टिक्का तेड़ तो तीका खाया थुरी जगत का साई।

अठ सठ तीर्थ जे ना वह उतरे नहीं मैल, जिन पट अंदर बार गुदड़ते भले संसार, तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार।

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुणना बेचारो कोई, माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गाते ही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो छो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापे कोई, सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सबाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए, हुवे सिफत कसमंदी नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, राम कली महला चौथा, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुर चरणी, जिन हर पा मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया, राव मेरे एक खेना प्राण ना रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया, तन तन वड भाग गुर शरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर ना कोई सूजै बूजै, मन हर जप जप होज पाया, नामहीन फिरे से नगटे, तेन घस घस नक वड़ाया, मोको जग जीवन जवाल ले स्वामी, रेदे अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा,

0: पाले स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत सिंह जी सतगुरु दी अपार बख्श रहमत होई है। अमृत वेले सजे दीवाना दी हाजरियां भरियां ने अलाही बाणी दे नेत्रम सर बाणी दे पाठ सुरू कीते उपरंत आसकी वार दे कीर्तन सुरू कीते ने। गुरु चरणा विच सरबत दे पलली पांदी चढ़दी कला आप समूह सुख शांत सुख शांति वास्ते अरदास बेनती होई है। सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे जो आप शरदा ने सरण कीते ने बड़े प्रोग्राम सार इस पावन पवित्र पाखवाग की कथा पाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी सरवण कराउणगे। सो बच्चों के कैंप शुरू ने। सो आप जी ने बेनती है इस विषय जो बख्शना सरवण करिए अज दे मुख वाग की कथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम

जी दंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी राम कली महला चौथा। सतगुरु दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगा गुर चरणी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया।

राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया, रहाओ मेरे एक खिन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। धन धन वड भाग गुर शरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न को सूझे बूझे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर ऐसे नकटे, तिन घस घस नक वढाया। मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया। मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना अकाल पुरख वाहिगुरु का। वडभागी हो सज्जे दवाना दियां हाजरियां भरदियां मुबारक बाणी दे नाल आप संगत ने सांझ बनाई है। सतगुर सब नूं अपने दरों करों नाम दात गुरसिखी जीवन बख्शण। तो इत्थे ही दुपहर दे दवाना की समाप्ति है। कड़ा प्रसाद की देग वरत रही है, गुरु के लंगर तैयार ने, आप जी ने लोड़ मुताबक छाके जाने। नाल एक दो बेनती हैं कि जिमें आप जानते हैं भी कलोना पटिंगटन वाले बन्ने जो जंगल नूं अग लगी हुई है, बहुत सारे परिवार बहुत सारे घर भी उस अग की लपेट में आए ने। तो आप संगत विच्चों जे कोई सहयोग करना चाहता हो आप बाहर डैस्क के उत्ते दस के सहयोग कर सकते हो, ता कि जिहड़ी राह समगरी है उत्थे आप जी दे सहयोग दे नाल गुरद्वारा साहब वल्लों पहुँचाई जावे। इहदे नाल ही बच्चियां दा गुरमत कैंप जिहड़ा है वह कल रोज तो आरंभ होया है, परसों तो आरंभ होया है, तो वह शनिवार तक निरंतर चलेगा। आप जे कोई सेवा बच्चियां दी करनी चाहते हो तो ता भी कर सकते हो। सारी संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।